तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे। जैस नीच को कोई ना जाने, नाम जापत ऊचों कुंट माने। दर्शन देख जीवां गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। यही बेनंती सुन प्रभ मेरे,

0: शब्द निरंकार
1: संख जाप संख भाव संख पूजा संख तप ताओ
0: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास
1: संख भगत गुण ज्ञान विचार संख सती असंख

0: अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परभंगी परमाथे समस्ती बपुते
1: कलंक मंडन कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरम परम रूपे
0: नमो जोग जगेश्वरम परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरम परम वृद्धे
1: नमो शास्त्र वाणी नमो अस्त्र वाणी नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
0: अपेक्षीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जगेश्वरम परम जुगते

0: जीवंग नौ बीज बीजे खिजे भिजे समस्त प्रसजे
1: निर्बालंग स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा रिद सिदंग निवासी चरपट शांत वै प्रसाद
0: गर्मी अम्बर धर्मे खल जोगे चल भोगे
1: अचल राजे अकल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग
0: दाता सर्वंग याता सर्वंग भाने सर्वंग माने
1: सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता।

0: के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है
1: सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे
1: के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र पाहु
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है
1: सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
0: सर्वत्र जय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भोग है
1: सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पिस
0: के सर्वत्र मानिय सदा भग प्रधानिय के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र थापिय
1: सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
0: के सर्वं कली में के परमं फही में के आकल अलाम के साहिब कलाम
1: में भजु तमाम रुजु में सुर सलाम सलिखत मदाम निदान हरी पुल जी मर जाय के यकीन
0: गलत रंग है अभेद है अभंग है अजीजल निवास है गली मल खिराज
1: सूप त्रमुक्त भूत है प्रभुक्त प्रभ है सुजुक्त सुधा
0: है रंग स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्व साज
1: समस्तो सलाम स्तबल काम बास रूप है गाद अनूप है
0: गाद रूप है अनाद स्वरूप है
1: सदा भंग सदा भोग स्वरूप।

0: ती चौपाई हमरी करवाते रच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा।
1: तब चंदन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा।
0: हमरे दुष्ट सबे तुम काबू आपा दे मोहि बचाव।
1: सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबे करतारा।
0: मोर रच्छा निज कर दे करिया सापारण को आठ संगरिया।
1: पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा।
0: तुम है शाड़ कोई वरना त्याहू जो भर चहु सो तुम ते पाओ।
1: सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन सतर हमारे मारिय है।
0: आप हाथ मुझे बरिया मरण काल का त्रासन वरिया।
1: जो सदा हमारे पच्छा श्रिया सुजो करे और अच्छा
0: राखल।

0: रसना तू अमृत सराच रही, तेरी प्यास ना जाए।
1: प्यास ना जाए होत की तैज चहरस पल्ले ना पाए।
0: हरस पाए पल्ले पिए, हरस बहुत न तिसना लागे आए।
1: एहो हरस करमी पाई है सतगुरु मिलै।

0: आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया।
1: हर गाओ मंगल निसखी है, सुख दुख ना व्यापे।
0: चरण लागे दिन सपा गए, अपना फिर जापे।
1: अनहत बाणी गुरु

0: के कर्म कमाया, तुद शरीरा जा तू जग में आया।
1: जिन हर तेरा रतन रचया, सो हर मन न बसाया,
0: गुर प्रसादी हर मन बसया, पूर्व लिखिया पाया।
1: कहे नानक ए शरीर प्रवान हुआ, जिन सतगुरु स्यो चित लाया।
0: ए नेत्रो मेरियो हर तुम मह ज्योत तरी, हर बिन अवर न देखो कोई,
1: हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया।
0: एहो भी संसार तुम देख दे, हो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया।

सुखमणी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना के मन बिसराम रहाओ। प्रभ के सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ के सिमरन दुख जम नसै, प्रभ के सिमरन काल पर हरै, प्रभ के सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत

प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरे मूचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभु के सिमरन सबकी सुझै।

जिसके मन पार ब्रह्म का निवास हो, तिसका नाम सत राम दास हो, आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतन पाए तिन पाया, सदा निट निठर जानस हो, दास दर गया प्रवान। अपने दास को आप कृपा करें, तिस दास को सब सो जी भरा, सब संगत मुदास सियासी युक्त नानक राम दास प्रभ की आज्ञा तम धावै, जीवन मुख सो कहावै, तैसा अर्ख तैसा सोग, सदानंद नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी, तैसा अमृत तैसी भी खाटी, तैसा मान तैसा अपमान, तैसा रंग तैसा रजान, जो वर्ता

अवृत त्याग बिखयाल जंजाल तन तन कह सब कोय मुख उजल हर दरग्या सोए एह वपार विरला वपारे नंग तां के सद बरहारे चरण साध के तुय तुय पियो अर्प साध को अपना जियो साधक तुर कृष्णान साधु प्रजाइये कुरबान सा सेवा वडभागी पाईऐ सा संग हर कीर्तन गाईऐ अनक विघन ते साधु राखै हर गुण गाए अमृत रस चाखै उट गही संते दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवालन हार भूखे को देवत आधार सरवण दान जागी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लैना पाहे साब के शतिसके ओ करने जोग जिसमें दूसर हुआ न होक जाप जन सदा सदा रहन दीन सब ते निर्मले करने कर कृपा जिसको नाम दिया नाक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुरु की वर्तीता तिस जन आवे प्रभु चेता भगत भगत सुनिए तै लोए जाके हृदय को होए सच करनी सचता की रैत सच हृदय सतमुख कैत साची दृश साचा आकार सच वर्ते साचा पसार पार ब्रह्म सच कर जाता नाक सो जन सत समा

गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पावन कर पेख सासा सिमरो को बिंदा मन त्रिकीर्तन चिंदा आसन त्याग तरंग संजना की तू मन मांग अवशोर विनती करो सासंग गुण सागर तरो हार तन के परले भंडार नानक पूरे नमस्कार किम कुछ सहज आनंद सासंग पद परमानंदा नरक नवार जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित्तवो नारायण।

निज कर ताड़ी लाई शुद्ध रस नाम महारस मीठा शुद्ध रस नाम महारस मीठा निज कर तत गुसाई तेही मन जैही तै राखिया ऐसी

0: तिसनो अगली ओम जो फेदूना खाए खसमै करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मोए मोए पाणा खाए जिस दा दिता खावना
1: दिस दही है शाबाश।